रानी कैकई के कोप भवन में काल रात्रि बीत चुकी है। प्रातःकाल कैकई का आदेश पाकर सुमंत्र श्री राम को वहां ले आते हैं। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में धरती पर पड़े हैं। वो श्री राम से कुछ नहीं कह पाते। श्री राम ने माता कैकई से पिता की इस दशा का कारण जानकर कहा, हे माता, वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। रानी कैकई श्री राम के मनोभाव जानकर हर्षित हुईं और माता पिता तथा भाइयों के प्रति उनके आदर तथा स्नेह भाव की प्रशंसा की। बोली, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम अपने पिता को समझाकर वही करने को कहो जिससे इन्हें चौथेपन में अपयश का भागी न बनना पड़े। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और राम राम कहते हुए उन्होंने करवट ली। जब सुमंत्र ने उन्हें बताया कि राम आए हैं तो धीरज धारण कर उन्होंने आंखें खोली। स्नेह से विकल होकर उन्होंने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। हृदय में लगे गहरे आघात की पीड़ा के कारण उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे। मन में बस बार बार सृष्टिकर्ता से यही मनाते हैं कि राम वन न जाएं। अवठरदानी शिव से उनकी विनती है कि दीन जानकर आशुतोष उनका दुख दूर करें।

0: मु 200 जाय उठिथिली एबे नहला नाही से 500 रे कथाटा टुटु दियंत टंकाटा आगो गण दियंत
1: हो सारे ए टंकाटा रखंत नगद 500 अछि
2: हां 500 कोन हजारे देले भी होई पारिबनी जानो आगरे मैट्रिक परीक्षा अछि बोली आमो साहेब परमिशन देबा को बिल्कुल मना करथुले मु तांकु केते कुहा बुला कलारु शेषरे से बड़ कष्ट रे राजी हेले आउ तमे दीटा वैल्यूएबल परमिशन लेटर टाकु भाजी साग भावरे हाती नेबा को बसछ नहीं मांगता
0: मोला जा मांगता आज्ञा सबु किछि मांगता खाली इच्छा कोले हला इच्छाटा थिले भी हला ना कौन कहउछंती आपण
3: तो सबु कहउछ मु आउ कोई भी कौन
0: मोला जा सी कथा गुडा को तो मु पूणी सार को कहउछी बुझिले सारे सेल भलो हेले हजारे टंका सीए बाकी कथा आज्ञा आपण तो नेबे आमे तो दबु ना कौन कहउछंती आज्ञा आपण
3: सेई कथा परा मु भी कहउछी हो मेंजर बाबू
1: आज्ञा ए यही नगद 500 रखंत
3: रख रखंत
1: रखंत
3: आमो प्रति टिके दया करंदु आगा नचते 60 70 प्राणी भासी जिवे
2: मु तो दया करूची हो मालिके हेले सेई दयाटे को ग्रहण करिया पई तमर कैपेसिटी टा थिले हेबो हो हेला आउ कोन करा जिवो एई नियो अनुमति पत्र टा नियो दरकार हेले आउ 7 दिन खंडे बढै देबा किंतु आउ 500 टंका टा तमर ठीक मने रहे जेमिति
0: मोला जा या ना पुणी गोटे कथा बुझिले सारे सेलटा उठि चलले ना आपणकर पॉकेटटा तो भर्ती हेला बोली जानंतु खाली आपणकर दयाटा थिले हेला
2: मो दयाटा तम यात्रा सरिबा जाय तम संगरे निश्चित होबे अछि एथर हेला तो
0: मोला जा हेलानी आउ कोन
2: हो तेबे मु आसछि अरे देखिलो हठात मन पड़गला बोली सीना नचे घरे बाहर समस्त आज मत कंचारे कंचारे खाई जाई थांते
1: को कथा आज्ञा
2: पास
1: पास
2: हो घर पाई तीनटा आउ ऑफिस स्टाफ पाई सातटा खंडे निहाती दरकार तापुनी फ्रंट रो रे
3: मु पचरुची एटा व्यावसायिक यात्रा पार्टी ना गोटे दातव्य सांस्कृतिक अनुष्ठान सब विभाग को सब अनुष्ठान को तो 10-15 लेखे पास गणिब आ सकाळ पाइले गेफा मारिबो किमिति
0: मोला जा बंद कर दो नांती आपणकर फ्री पास गुडा आपणकर यात्रा हेले केते न हेले केते ए मो ऊपर किया गुडे नालिया कि देखौचंती
3: ओ तमो ऊपर नालिया कि देखुनियो देखौची मो भाग्य ऊपर हाय रे मो फटा कपाळ सोना पूर्व जन्म रे जिए 100टा गाई मारी थिबो ए जन्म रे से यात्रा पार्टी करिवो खाली झमेला ऊपर झमेला
4: झमेला तो आपण माने क्रिएट करचोते
1: हैं
4: आ भाग्य को दोष देले कोन हबो
1: माने
4: माने कोन आपण रीतिमत मोर अपमान करचोते मो भलिया गोटाए ओडिसार विख्यात यात्रा हीरो मौजूद थौ थौ से माइक ना रत्नटा करिवो हीरो रोल आपणकर मथाटा ठीक अछि ना
3: हां मो मथा बिल्कुल ठीक अछि बुझलु पबो ना आज की दीर्घ 5 वर्ष ला तते हीरो रोल रे देखी देखी लोकंकर मन छिए गेला सेथि पई मु मो यात्रा पात्र गुटे नाइ नथिबा संस्कार आनिमा को जाउछ एणी की धीरे धीरे मो यात्रा दल रे माइकिना माने हेबे मर्द आ मर्द माने हेबे माइकिना
4: की आश्चर्य कथा नाटक रे माइकिना माने हीरो हेबे आ मर्द हीरोइन आज जाय पृथ्वी रे कथा कोठ होईछि
3: आ कोठी हेइनी बोली त अभी मो यात्रा दल रे हबो आ अल्बत हबो
4: ता पूर्वरु पच्चा अंडा छिंडा चप्पल आ ढेला माड़ खाइबा पे आपण प्रस्तुत हे जानतो
3: आबे पच्चा अंडा की छिंडा चप्पल नो खाली टंका माड़ हबो टंका तो फुटिला आखरे देखिबो नि के जा अपना काम कर
4: ना।
3: जा
4: ए कदा भी हे परिबो नि
3: हां हे परिबो नि माने
4: आगामी 2 वर्ष पर्यंत आपण को पार्टी रे मु हीरो रोल करिया पई रीतिमत बॉन्ड साइन करची आ मु मौजूद थौ थौ मो सामने गोटे छार माइकिना हबो हीरो आउ मरद पुह सहजे बरदास्त कर देखा देखा आज रतनी केमती हीरो हबो आउ आपण को यात्रा केमती चलो
3: आउ पवना सावधान कहीद तू जदि किसी गंडगोल करू ना
4: गंडगोल को आपण निजे इनभाइट करते गंडगोल अल्बत हबो देखा देखा कौन करी आपण
3: बेसी गुडे बड़ी बड़ी कथबार्ता करूँ तो धक्का मारी बाहर करदेवी

0: थक्का मारिबा तो दूर कथा मिस्टर मालिक आपण आगो खाली मोर बॉडी के टिके टच कर देखंतु ना
1: पवना
0: पवना भिरु किंबा का पुरुष नोहे जे आपण को नाली आखी देखि डरी थरी यात्रा पार्टी छाड़ी चली जिवो आगामी दि वर्ष पर्यंत आपण को यात्रा पार्टी रे मोर हीरो रोल करिवार अधिकार अछि आ सेई अधिकार को मु निश्चित भाव जाहिर कर देखि देबी किंतु मु ए अपमान केबे सही परबिनि देखिबा देखिबा आज यात्रा केमथि होउछि
1: मैनेजर बाबू हो मैनेजर बाबू आइले आसो हो कोठी अछ आसो चंचल
2: ओ आज्ञा बड़ असुविधा होउछि

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत की 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायत

सभापति राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4-9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले

0: फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा AI से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, AI से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे। अदालत ने कहा, फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट JEE में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक। नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची SIT, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं। राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय

0: सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश ठेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: आपण मैंने शुणुले कतोटी ओडिया कथाचित्रर गीत एथर चलचित्र छाती लिखी तोरीना गीतटी गायछन्ति ईरा महांती एवं सुभाषिष गीतटी लिखिछन्ति बसंतराज सामल संगीत सजेछन्ति मलय मिश्रा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है।

0: इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने इस संबंध में दोनों गुटों के दावों और आपत्तियों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋतव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के लिए विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि सुरक्षा जोखिमों के कारण मुस्तफा खामेनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 जुलाई से गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में और दूसरा टेस्ट 23 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

छत के परखने वाला खांसी दास बाबा आज गिरोदपुरी माँ जन्म लेके आए हैं रागी और अपन तल्ला थपाए खातिर खांसी दास बाबा गिरोदपुरी ला छोड़ के छाता पहाड़ जंगल में जाके एकदम बड़ा सुंदर के साथ में भैया मन मन में सोचा था।

बारागढ़ लकड़ीला एक ठाकर दिसरागी आसत के धुनी जला करके या पंतन ला बड़ा सुंदर के साथ में वहां जोग लगा दिस भैया हो तो रेतापा देखी के हो।

हाथ में भाई अपन तन ला जब तपा दिसरागी तब पुरस्पिता कहे घासीदास बाबा ला 6 महीना हो गए है बेटा जाके सफा माता हा स्वर्गवास हो कहे वाला अमृत देके जिंदा कर दे देश दुनिया में सत के प्रचार कर ले कहा।

0: घासीदास बाबा वो कर शरीर तुम्हार मिट्टी में मिल गए है घासी दाते जिंदा करूं का था तुम ओला विश्वास नहीं आवाते कहत थे भैया सज्जन हां
1: पानी आ बोलता वानी हो मरा हुआ प्राणी
0: तब कथे घासीदास बाबा ला सत के प्रचार करे खेतो पांच मिनट हुआ थे एक ठन मच्छिया मरे है एला तो जिंदा करके देखावे तो जरूर सफा माता के लाश ला कूड़ के निकालू कहत थे रागी घासीदास बाबा कमंड नल ले पानी निकाल के अमृत बना के जब मरे बच्चा के ऊपर में चूहा दिस रागी अब मरे बच्चा अपना सुंदर के साथ अमृत पी के भैया धरती ऊपर में खड़े हो गए रागी।

दास बाबा अमृत दे करके रागी असही में बादला पतिया के 6 महीना के मरे सफा माता लाकुड की निकाल के थत्ती ऊपर मेरा दिन रागी कमंडल ले पानी निकाल करके झांसी दास बाबा बड़ा सुंदर के साथ में अमृत बना ली भैया हो और वही अमृत ला लेके भैया जब सफा माता के मुंह में दुहाई को दे सतनाम कहके भैया सफा माता धरती ऊपर में खड़े हो गए रागी सफा माता धरती ऊपर में खड़े हो गए भैया अपन घासी दास पाती के चरण में गिर के मोर भैया हो सत्य नामे जपो गुरु के कहना मानो सुनोगा भैया मोर घूमी घूमी काया।

0: तीसरा गी। अब ये सब महिमाला घासी दादा आज आप देश दुनिया में देख डालिन तो भैया वही दिन ले गिरोदपुरी एकदम सत के धाम बन के हिरागी। तब सफरा माता घासी दास बाबा नगर निवासी मिल के बाबा सतपुरत घासी दास बाबा कैसे जावत है मिले बनवर भैया हो
1: कैसे जावत है जी
0: थानी में था।

खांसी दास बाबा अमृत दे करके रागी आ सही में बादला पतिया के 6 महीना के मरे सफा माता लाकुड़ की निकाल के धरती ऊपर मेरा दिन रागी कमंडल ले पानी निकाल करके खांसी दास बाबा बड़ा सुंदर के साथ में अमृत बना ली भैया हो आ वही अमृत वाले के भैया जब सफा माता के मुंह में दुहा दी तो जय सतनाम कह के भैया सफा माता धरती ऊपर में खड़े हो गए रागी सफा माता धरती ऊपर में खड़े हो गए भैया अपन खांसी दास पति के चरण में गिर के मोर भैया हो सत्य नामे जपो गुरु के कहना मानो सुनोगा भैया मोर घूमी घूमी काया।

0: तीसरा गी। अब ये सब महिमाला घासी दादा बाज अब देश दुनिया में देख डालिन तो भैया वही दिन ले गिरोदपुरी एकदम सत के धाम बन के हिरागी। तब सफरा माता घासी दास बाबा नगर निवासी मिल के बाबा सतपुरत घासी दास बाबा कैसे जावत है मिले बनवर भैया हो
1: कैसे जावत है जी
0: थानी में था।

सुंदर के साथ में धाम बने हे मोर भैया हो, जेला हर साल फागुन महीना के पांचवी से लेकर के साते तक के भैया लाखों लाखों जन समाज के भीड़ भड़ाका लागत है ये मोर संगी हो। छत्तीसगढ़ में तीरथ बन गए गीरत

सुंदर के घासी दास बाबा के नाम में गिरौदपुरी लेकर से भंडारपुरी तक के धाम बने हैं मोर भैया हो। ये तो छत्तीसगढ़ के बातें रागी, देश दुनिया में घलो घासी दास बाबा के जय जयकार हुआ थे। गली गली में जेत खाम गड़े है भैया, वही जेत खामला हर साल के दिसंबर के 18 तारीख में बड़ा सुंदर के साथ में झंडा चढ़ावा थे मोर रागी। दुनिया मासो

0: ଉପରେ
1: ଶକ୍ତି ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ବରଂ ପିଢ଼ି ପାଇ ରହିଥାଏ। ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ ସୁପର ଗ୍ରେଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ 64 ବର୍ଷର ଦୃଢ଼ ମୂଳ ଦୁଆ। ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ ଦ ପରଫେକ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ଚଏସ।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर

0: ଶେଷ ହେଲା ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्यायिक क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के

0: सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam in Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report mentioning the resistance front. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities, including Al-Qaeda, ISIS, Daesh, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. Prime Minister Sanae Takaichi has since departed from India. Prime Minister Narendra Modi will visit Rajasthan and Gujarat tomorrow. During his visit, he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth around 1.06 lakh crore rupees in Balotra, Rajasthan. These projects span multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. The Prime Minister will inaugurate the new terminal building at Jodhpur Airport. He will also launch the modified Uran scheme in Jodhpur. He will dedicate India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex to the nation at Pachpadra in Balotra, marking a landmark achievement in the country's energy.

0: ଶ୍ରୋତାମାନେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ଆଚ୍ଛା ଦାସବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା 1970ରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ରାଇଟ୍? ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେମିତି ଅଛି?
2: ଆରେ ଏଇଟା ଏକଦମ ସିମ୍ପଲ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲି, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚେଟିନାଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ।
3: ଶକ୍ତି ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ବରଂ ପିଢ଼ି ପାଇ ରହିଥାଏ। ଚେଟିନାଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ ସୁପର ଗ୍ରେଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ, 64 ବର୍ଷର ଦୃଢ ମୂଳଦୁଆ। ଚେଟିନାଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ, ଦ ପରଫେକ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ଚଏସ୍।
4: ମନ୍ କି ବାତ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆକାଶବାଣୀ ପର।
5: ମେରି ମନ୍ କି ବାତ୍ କେ ସମ୍ବନ୍ଧ ମେ ଅଗର ଆପ कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
4: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
5: आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
1: अच्छा दास बाबू, आपण को घरटा 1970 रे तयारी थिला, राइट? हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
2: अरे एटा एकदम सिंपल, एवं सेथि पई मु सेते बेले मोर विश्वास रखी दिली, एवं आजि मध्य

0: चेटिनाड सीमेंट उपरे
1: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरंग पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाड सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्ष रो दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद को एक लाफानी बाब करार दिया है। उन्होंने अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। वजीर खजाना
1: आकाशवाणी। संवाद पढ़ुंट सत्यव्रत बेहुरा। प्रधानमंत्री आसंताकाली राजस्थान और गुजरात गस्तरे जाए विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। पंचायतीराज व्यवस्था को सशक्त करने उद्देश्य आज नूआदिल्ली में अनुषित होती कर्मशाला। जम्मू काश्मीर पहलगाम और बालताल मार्ग आरंभ है श्री अमरनाथ यात्रा। पाकिस्तान में सड़क दुर्घटन 40 जन मृत्यु। एवं फिफा विश्वकप 2-0 गोल्ले अल्जेरिया को परास्त कर राउंड 16 रे पहुंचला स्विट्जरलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाल राजस्थान और गुजरात गस्तरे जिबे। राजस्थान गस्तरे जाए श्री मोदी जोधपुर विमानबंदर नुआ टर्मिनाल कोठार उद्घाटन करिबे। 480 कोटी टंका व्यय अटकल निर्मित यह नुआ टर्मिनाल कोठा वार्षिक 20 लाख यात्री को सेवा जगैदेव। श्री मोदी जोधपुर परिवर्तित उड़ान योजनार शुभारंभ करिबे। एहि योजनारे विमान उड़ाण आधारित विकास कार्य को त्वरान्वित करा जिबो। गस्तकाळरे श्री मोदी 1,06,000 कोटी टंकारु अधिक विभिन्न विकासमूलक योजनार उद्घाटन शिलान्यास करिबे। एहि सबु प्रकल्पगुडिक मध्यरे पेट्रोकेमिकल्स, रेल, सड़क

0: day while Mumbai witnessed rain for the fourth consecutive day. The Indian Meteorological Department has issued an orange alert for Mumbai for the next 3 days, with more than 150 millimetres of rainfall recorded in parts of the city during the last 24 hours. The Brihanmumbai Municipal Corporation has kept its emergency teams on alert.
1: With continuous downpour in the metro city, waterlogging was reported from low-lying areas. Central and Harbour Railway services were delayed by 10 to 15 minutes. Western Railway services remained normal. Heavy rain also continued in the Konkan region. In Ratnagiri district, an average of 69 mm rainfall was recorded during the last 24 hours. Water levels in major rivers have risen, and the Jagburi River in Kher Taluka in Ratnagiri district has reached 4.9 meters, close to its warning level of 5 meters. Authorities are monitoring the situation. Meanwhile, as a precaution during the active monsoon season, the 5 battalion of the National Disaster Response Force has pre-positioned rescue teams across vulnerable districts in Maharashtra and Goa. Teams equipped with flood rescue equipment and trained personnel have been deployed to ensure a quick response to any rain-related emergencies. With Nivedita's report, Anuja Kumar, AIR News.
0: In the FIFA World Cup, Switzerland defeated Algeria 2-0 to reach the round of 16 in Vancouver, Canada. Switzerland will face either Colombia or Ghana on Tuesday at the same venue, aiming to reach the quarterfinals for the fourth time in their history. In another match, Spain defeated Austria 3-0 in the round of 32 at Los Angeles Stadium in Inglewood, California, to book a place in the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi describes Amarnath Yatra as eternal chapter in spiritual tradition and cultural unity of the country, extends greetings to devotees. Finance Minister Nirmala Sitharaman invites French investors to partner with India's journey towards Vikasit Bharat 2047, calls for strengthening India-France strategic partnership. Two-day orientation program for newly elected members of Legislative Assembly begins in West Bengal. India steps up humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Nearly 2,600 people died, thousands still missing. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and parts of Madhya Pradesh till tomorrow. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत हजारों लोग अब भी लापता गुजरात गोवा मध्य महाराष्ट्र ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई अब समाचार विस्तार से श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे
3: बोलो बाबा अमरनाथ की जय
4: बाबा अमरनाथ बम बम
5: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है
6: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
7: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है वो खूबी बहुत अच्छा।
5: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेशवाक शाह।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में जिसे विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति जेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के 2 जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा

0: के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। यह सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
3: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों

0: इस साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपण कार्यक्रम सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। कार्यक्रम आम केन्द्ररु प्रचारित हेउछि 308.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज जोगे। आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणि परिबे एही विज्ञापन परे।
3: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
4: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
3: आबाल वृद्ध वनिता समस्तंक पाई
4: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
3: केवल आकाशवाणी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
0: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु, सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
0: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
0: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
0: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
0: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
0: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है।
2: और इसी सिलिकॉन

0: ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
1: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
0: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
1: मामा जी, मामा जी।
2: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
3: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है
1: जी। उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
2: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ, यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो। बता सकती हो कि ये क्या है?
3: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
2: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है, जिसे भूर्ज वृक्ष कहा जाता है।
1: अच्छा, भूर्ज वृक्ष।
2: हाँ, भूर्ज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
3: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
2: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
3: अच्छा।
2: और बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
1: ये किस भाषा में है?
2: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
1: मामा जी, अब आगे भी बताइए ना।
2: हाँ हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा।
2: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा।
2: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
3: अच्छा।
2: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं, और शिलालेख को
3: एपिग्राफ।
2: शाबाश निधि।
3: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
2: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
3: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
2: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
1: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
2: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
1: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
2: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि

0: एक नजर अतीत की ओर, श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
1: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
2: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओ, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
1: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
2: जी,
1: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रहीं
2: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
1: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
3: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कारंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछे तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं, इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो,

0: क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूं, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूं, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा, वाह। और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
0: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
3: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कार्यों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
0: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
3: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी।

0: कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
1: अलख निरंजन।
2: साधु बाबा।
1: अब अच्छा,
2: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
1: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
2: क्या?
1: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
2: है?
1: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
2: अच्छा,
1: हाँ
2: बहुत बड़ी फौज है।
1: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
2: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
1: अच्छा,
2: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
1: है? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
2: बिल्कुल है।
1: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
2: उसका भी इंतजाम है।
1: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
2: देखो है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
1: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
2: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
1: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
2: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनू बेटा, ला तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ।

0: मैं तुम्हारा महावत हूं, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
1: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: सुनुदले सीआईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आके शुणी भवानी पटना।

0: भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जाँच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मलक्का जल डमरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने बैट, BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा।

पेरिस नगरे आयोजितं भारत फ्रांस व्यापार सम्मेलनं संबोधयन्त्या तया सप्रमाणं प्रतिपादितं यत् प्रावधिक प्रगतेः आपूर्ति श्रृंखलायाः ऊर्जा संचारस्य भूराजनैतिक उद्भव परिवर्तनानां च कारणात् वैश्विक अर्थव्यवस्था तीव्रगत्या परिवर्तमाना वर्तते। वित्तमन्त्रिणा फ्रांस देशस्य वाणिज्य नेतारः निवेशकश्च विकसित भारतमिति राष्ट्रीय संकल्पस्य महायात्रायां भारतस्य सहयात्रिणः भवितुं सोत्साहम् आहूताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतेन ऑपरेशन अमिस्ताद इत्यस्यान्तर्गतं भूकंपग्रस्ताय वेनेजुएला देशाय स्वकीया मानवीय सहायता प्रेषिता। विदेशमन्त्रालयेन सामाजिक संजालीयतन्त्रे प्रचलितस्य चिकित्साकार्यस्य चित्राणि प्रसारयता सम्मुलिखितं यत् भारतीयसेनाक्षेत्रचिकित्सालयः प्रभावितेषु समुदायेषु निरन्तरं चिकित्सासेवाः प्रयच्छति। वेनेजुएलास्थितेन भारतीयदूतावासेन कथितं यत् अस्मिन् दक्षिण अमेरिका राष्ट्रे भारतस्य व्यावसायिक सेवा गुणवत्तायाः जनसामान्यैः भूरिशः प्रशंसा कृता। वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिः डेल्सी रोड्रिगेज इत्येषा सप्तदिवसीयस्य राष्ट्रिय शोकस्य घोषणां कृतवती। अनेन भीषण भूकंपेन मृतानां संख्या 95+500 संजाता। पश्चिम बंगाल विधानसभाया नवनिर्वाचितानां सदस्यानां कृते आयोजितस्य द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य अद्य कोलकातायाः न्यू टाउन कन्वेंशन केन्द्रे लोकसभाध्यक्षेन ओम बिरला इत्यनेन विधिवत् उद्घाटनं विहितम्। उद्घाटन समारोहात् प्रागेव लोकसभाध्यक्षाय ओम बिरला वर्याय गार्ड ऑफ ऑनर इति राष्ट्रिय सम्मान प्रणामः समर्पितः। उद्घाटन सत्रं संबोधयन् लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला प्रावोचत् यत् विधायकानां कृते विधि निर्माण प्रक्रियायाः तन्त्रस्य च गभीर ज्ञानस्य आवश्यकता वर्तते। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन गुजरात कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र ओडिशा पश्चिम मध्य प्रदेशेषु श्वः यावत् अतिवृष्टेः रक्त संचेतना प्रसारिता। अनेनैव सह छत्तीसगढ़ पूर्व मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश विदर्भ क्षेत्रेषु झंझावातस्य विद्युत प्रपातस्य चापि संभावना प्रकटीकृता। विभागानुसारं श्वः यावत् उत्तरप्रदेश बिहार आंध्रप्रदेश पश्चिम बंगाल कर्नाटक जम्मू कश्मीर लद्दाख तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना पूर्वोत्तर राज्येषु अपि अत्यधिक वृष्टिः भवितुं शक्या। फीफा विश्व चषके कैनेडा देशस्य वैंकूवर नगरे स्विट्जरलैंड देशेन अल्जीरिया देशः 2-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्रवेशः संप्राप्तः। इतिहासे चतुर्वारं प्रागुपान्त्य चरणे गन्तुं स्विट्जरलैंड दलम् आगामी मंगलवासरे अस्मिन्नेव स्थाने कोलंबिया अथवा घाना देशेन सह स्पर्धिष्यति। अन्यस्मिन् द्वन्द्वे स्पेन देशेन कैलिफोर्नियायाः लॉन्स एलेंजिस क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 चक्रे ऑस्ट्रेलिया दलम 3-0 इत्यनेन पराभूय राउंड ऑफ 16 चक्रे स्वस्थानं सुरक्षितम्। अपरत्र कैनेडा देशस्य टोरेंटो नगरे प्रवृत्ते द्वन्द्वे पुर्तगाल देशः अपि क्रोएशिया दलम 2-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्राप्तवान्। मंगलवासरे डलास नगरे राउंड ऑफ 16 चक्रे पुर्तगाल दलम स्पेन देशं सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁବେଳେ
1: କମ୍ପ୍ରିମିୟମ ଜ୍ୟାଦା ବୋନସ ଅପନୋ କେ ଲିଏ ସବସେ ସହି ଆରପିଏଲଆଇ इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुचन बंदिता मिश्र जुहार पहला मुख्य खबर भुवनेश्वर जापान रो व्यवसायी प्रतिनिधि मानकर संगे मुख्यमंत्री कले आलोचना कहले रायजे गला देढ़ बछर भितरे 3.5 लाख कोटी टंकार हेजी पुंजीनिवेश रायजे चलीथिबार भोटर तालिकार स्वतंत्र सघन संशोधन लगी 10 जन वरिष्ठ आईएएस पर्यवेक्षक भावे हेले निजुक्त थरे व्यवहार होउथिबार प्लास्टिक बाबदे लोक को सचेतन करबार लगी आज पालन हेउचे अंतर्जातीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस और लघुचाप्र बोले राज्यर बड़भागी जगह न लगि रही वर्षा बरगढ़ सुवर्णपुर बौद्ध नुआपड़ा सहित 9टा जिला नईपे जबर वर्षा सतर्क कला पाणीपाग विज्ञान केन्द्र एथर पूरा खबर राज्य सरकार गोटे सशक्त समृद्ध और वैभवशाली ओडिशा गठन लगे संकल्पबद्ध बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछन भुवनेश्वर ठाने जापान रो व्यवसायी प्रतिनिधि मानकर संगे आलोचना अधिवेशन थी जोग देकर मुख्यमंत्री कहिछन गला देढ़ वर्ष भितरे रायजे 3.5 लाख कोटी टंकार पुंजीनिवेश हेइछे इ समय भितरे सरकार 10 लाख कोटी टंकार नुआ शिल्प प्रकल्प के अनुमोदन करिछन उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा नु नेकर शिल्प विप्लव रो यात्रा आयबा दिने जारी रहबा इ चेष्टा युववर्ग को निजुक्ति सुजोग आ रोजगार नुआ सुजोग देछि बोली मुख्यमंत्री कहिछन
1: आज ओडिशार 30 जिला मध्य 29 जिला किसी ना किसी नूतन शिल्प आम आज करने जाऊ आगामी दिन में जो आ गोटे जिला रहा से निश्चित भाव शिल्प प्रतिष्ठा करमर लक्ष्य हूँ शिल्प विकास धारा ओडिशा सारा
0: इ अवसर मुख्यमंत्री उपस्थिति थी जापान रो प्रमुख शिल्प उद्योगी सहित 67,000 कोटी टंकार बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछे इति पाखापाखि 7,000 निजुक्ति सुजोग सृष्टि हेबा बोली सरकार तरफ कहुजाइछे कार्यक्रम थी शिल्प मंत्री संपत चंद्र स्वाई मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव हेमंत शर्मा प्रमुख उपस्थित रहीकरी राज्ये दीर्घकालीन स्थायी विकास लक्ष्य हासिल लगी भिन्न भिन्न रणनैतिक सहयोग उपरे आलोचना करथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नुआदिल्ली गस्त सारिकर आज भुवनेश्वर पहुंचीछन गस्त अवसर मुख्यमंत्री बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को सौजन्यमूलक साक्षात करथिले ओडिशार प्रगति सांगठनिक सुदृढ़ आउ आयबा दिने कार्यपंथा भावे आलोचना होइथिबार श्री माझी कहिछन मिशन शक्ति विभाग तरफ राज्यस्तरीय दक्षता विकास तालीम कार्यक्रम 3 नंबर खेप भुवनेश्वर मिशन शक्ति भवन आज शुभारंभ होइछे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा इताके उद्घाटन करिछन जुलाई नु सेप्टेम्बर मास तक खेप खेप करी आयोजित हेबारके थिबारी तालीम कार्यक्रम थी राज्यर 30टा जिलार पाखापाखि 4,500 कम्युनिटी सहायक कर्मचारी भाग नेबे आजरीर कार्यक्रम थी उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिडा निमापड़ा आउ गोप ब्लक्र 190 जन कम्युनिटी सहायक कर्मचारी परिचय पत्र बांटिछन राज्य काम करुथबार मोट 62,341 जन कर्मचारी खेप खेप करी परिचय पत्र दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्ष्यपति दीदी अभियान और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी।

0: नेतृत्व थी राज्य सरकार महिला मानकर आर्थिक सशक्तिकरण के सबु नुआत का प्राथमिकता दौछन बोली उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिडा कहिछन। राज्य चलीथिबार भोटर तालिकार स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर लागि 10 जन वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को भोटर तालिका पर्यवेक्षक भाव निजुक्ति दिया जाइछे। सबु पर्यवेक्षक माने दायित्वती थिबार जिला के कम से कम 3 थर गस्त करी स्थिति समीक्षा करबे। आएबा 5 तारीख चिठा भोटर तालिका बाहरबा बोली राज्य निर्वाचन कमिशन कर तरफ सूचना दिया जाइछे। कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग तरफ 2026-27 आर्थिक बछर लगी 4 निगम ओडिशा कृषि शिल्प निगम ओएआईसी ओडिशा कृषि प्रोत्साहन आउ पुंजी लगान निगम एपीआईसीओएल ओडिशा राज्य बिहन निगम ओएसएससी आउ ओडिशा राज्य काजू उन्नयन निगम ओएससीडीसीएल संगे बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछे। ए अवसर राज्य चाष आर चाषी मानकर उन्नति दिगे विभाग संगे तालमेल रखिकर एका संगे काम करबार के निगम मानको उपमुख्यमंत्री कनक बर्धन सिंहदेव कहिछन। ओएआईसी 1200 कोटी टंकार कारबार सहित 54,000 टन सार 8,400 ट्राक्टर 1200 पावर टिलर जुगाबा एपीआईसीओएल 330 कोटी टंकार सहास्ति 1659 कृषि उद्योग स्थापना करवा ओएससी डीसीएल 500 एकर जमीती हाइब्रिड काजू जोगाबा आउ ओएसएससी जलवायु सहनशील बिहन जुगाबाटा बढ़ावा। उपमुख्यमंत्री श्री सिंहदेव चास्ती अत्याधुनिक प्रजुक्ति विद्या ब्रांडिंग आउ कम समयर फसल उपरे जोर देबाके परामर्श देइछन। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आएबा सोमवार रथयात्रा परिचालना प्रस्तुति बाबे समीक्षा करबे बोली श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी कहिछन। बैठक थी रथयात्रा नीतिकांतिर धारी समयाथि पूरा करबार शांति श्रृंखला रक्षा भीड़ नियंत्रण श्रद्धालु मानकर श्रृंखली दर्शन लगी पदक्षेप बाबे आलोचना हेबा बोली जनापड़ी। भक्त मानकर श्रृंखली दर्शन लगी बड़दाण्ड के भिन्न भिन्न भागे बांटा जाइकर फी भाग थी जने लेखा ओएस अधिकारी नियुक्त करा। रथयात्रा के शांति श्रृंखलार सहित करबाटा सरकार प्राथमिकता बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिछन।
1: जो मैंने आसबे स्वास्थ्य दृष्टि हो सुरक्षा दृष्टि हो पूरापूरी श्रीगुंडीचा दिन ठू आरंभ करी महाप्रभु नीलाद्री विजय पर्यंत से सुनावेश बाहुड़ा एवं से तपमंडप दर्शन सबू कथ सुरखुरी केमी श्रृंखलित भाव में हम से कथ को आखि आगे रखिकी ताकि विभिन्न अंशे बंटाई प्रति अंशपी जड़े जड़े सरकारी अधिकारी तार दायित्व रही है एक व्यवस्था कराई।
0: थरे व्यवहार होउतबार प्लास्टिक बाबदे लुकु सचेतन करबार लागि आज अंतर्जातीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पालन करा जाउछे। इ बछर दिवस रो वार्ता रहिछे गुटे निरंतर भविष्यत लागि थरे व्यवहार होउतबार प्लास्टिक नु मुक्ति। 2008 मसिया जुलाई मासर 3 तारीख थी गुटे परिवेश संगठन स्पेन रो बार्सिलोना नो पहला थर लागि दिवस पालन करिथिला। गुटे रिपोर्ट अनुसार फी बछर पाखापाखी 1 नु 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग व्यवहार करा जाइकरी फिकी दिया जाइसी जेनटा कि परिवेश उपरे प्रतिकूल प्रभाव प्रकाशी बोली विशेषज्ञ माने मत देइछन। इ बछर पूर्ति के थरे व्यवहार होउतबार प्लास्टिक नु मुक्त करबार आह्वान नेइकरी इ दिवस पालन करा जाउछे। ओडिशा राज्य आरक्षी गृह निर्माण और कल्याण निगम ओपीएचडब्ल्यूसी तरफ 2024-25 आर्थिक बछर लागि राज्य सरकार 21,28,00,000 टंका रेकर्ड लाभांश दिया जाइछे। आज मुख्य शासन सचिव अनुगर्ग को निगम रो अध्यक्ष और परिचालना निर्देशक सोमेन्द्र प्रियदर्शी लाभांशर चेक देइछन। 2025-26 बछरे निगम 2520 कोटी टंका सबुनु जह कारबार करिछे। 2014-15 नु नियमित भाबे लाभांश दे आसुथबार निगम एब तक मोट 86,05,00,000 टंका दे सारिछे। उच्चा दर्जा निर्माण लागि निगम के 2 थर विश्वकर्मा पुरस्कार भी मिली सारिछे। तुर्की मर्सिन ठाने हेथिबार वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट्स यूथ गेम्स 2026 थी कलाहांडीर पारा बैडमिंटन खेलाली आकाश रंजन मुन 2 स्वर्ण आ गोटे रौप्य पदक जीतिकरी जिला और राज्य लागि गौरव आनीछन। पुरुष एकक SL3 आउ मिक्स्ड डबल SL3 SU5 वर्ग थी स्वर्ण जितबार सहित आउ गोटे पर्याय थी रौप्य पदक हासिल करिछन। ऐसे कलाहांडी पहुँचवार उत्तर जिला प्रशासन और क्रीड़ा संगठन तरफ भव्य संवर्धना दिया जाइथिला। पूरी श्रीमंदिर अणसर पिंडीन जरे पड़ीथिबार चतुर्धा मूर्तिंकर गुप्त सेवाथी दैतापति सेवक माने लागिछन। अनवसरर 5 नंबर दिन आज श्री विग्रह मानकर चंदन आउ कराल खुला जाइकरी श्रीअंग फिटा जिबा। सेआडे महाप्रभु मानकर सेवा लागि सुना गोसेई सेवक माने तयार करिथिबार अनवसर मैलम लागि करा जाउछे। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଉ ତାର ପାଖର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସମୁଦ୍ର ଖଣି ଇଲାକାନ ଲଘୁ

0: अच्छा
1: दास बाबू आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सहीथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखीतिली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
0: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरं पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
3: एथ्रो मनोहर उदास

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से और अर्जेंटीना का सामना केप वर्डे से होगा। स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में यानिक सिनर, डैनियल मेदवेदेव और नोवाक जोकोविच का मुकाबला जारी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच कल मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई, दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हराया। ISSF शॉटगन विश्व कप कल से इटली के लोनाटो में शुरू और तानिया हेमनाथ और आकर्षी कश्यप

0: जबकि हार के साथ कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती समाप्त। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लोकप्रिय खेलों में से एक फुटबॉल से। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज रात 11:30 ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 अर्जेंटीना और केप वर्डे आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। सुनते हैं इन मुकाबलों पर खास रिपोर्ट।
1: बीसी प्लेस स्टेडियम में हुए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अल्जीरिया को 2-0 से हराया। स्विट्जरलैंड की ओर से इस मुकाबले में ब्रील एम्बोलो और डैन नडोय ने गोल दागे। मैच की शुरुआत से ही स्विट्जरलैंड ने आक्रामक खेल दिखाया। 10वें मिनट में ब्रील एम्बोलो ने गोल करके स्विट्जरलैंड को 1-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ की शुरुआत होते ही स्विट्जरलैंड ने अपनी बढ़त 2 कर दी। डैन नडोय ने शानदार शॉट लगाकर गेंद को गोल पोस्ट में भेज दिया। यह वर्ल्ड कप में नडोय का पहला गोल था। 2-0 से पीछे होने के बाद अल्जीरिया मैच में वापसी नहीं कर सका।
2: And they should have got it away. And enjoy! What a start to the second half for Switzerland! Oh, they've got their eyes on the last 16 now. The Swiss stride proudly on into the last 16 of the World Cup.
1: इस जीत के साथ स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड कप में लगातार 3री जीत दर्ज की। यह पहला मौका है जब स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड कप में लगातार 3 मैच जीते हैं। अब स्विट्जरलैंड का अगला मुकाबला 7 जुलाई को कोलंबिया और घाना के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। जबकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराया। पुर्तगाल की ओर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनल्टी पर एक शानदार गोल दागा। इस मुकाबले में मैदान पर उतरने के साथ ही रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप इतिहास का नॉकआउट मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो ने 41 साल और 147 दिन की उम्र में यह मुकाबला खेला। इसके साथ ही रोनाल्डो नॉकआउट मुकाबले में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बने। उन्होंने पूर्व खिलाड़ी पेपे का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 39 साल और 283 दिन की उम्र में यह मुकाम हासिल किया था। रोनाल्डो के अलावा पुर्तगाल की ओर से गोंजालो रामोस ने निर्णायक गोल किया।
2: Cristiano Ronaldo, the World Cup journey continues.
1: वहीं स्पेन ने भी प्रतियोगिता के राउंड ऑफ 16 का टिकट हासिल कर लिया है। राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया।
3: Correa, it's a well-timed run, it's 3. Austria put to sleep. And Mikel Oyarzabal says, I'm in the picture for the golden boot at the FIFA World Cup 2026.
1: स्पेन की ओर से इस मुकाबले में मिकेल ओयारजाबल ने 2 गोल किए, जबकि पेड्रो पोरो ने अपने देश के लिए पहला गोल किया। साल 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली जीत के बाद स्पेन की यह नॉकआउट मुकाबले में पहली जीत है। टीम का राउंड ऑफ 16 में सामना पुर्तगाल से 7 जुलाई को होगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब रुक करते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में इस समय यानिक सिनर का मुकाबला जेंसन ब्रुक्सबी से और डैनियल मेदवेदेव का सामना जॉन लेनार्ड स्टफ से हो रहा है। नोवाक जोकोविच का मुकाबला आर्थर रिंडकनेक से जारी है। वहीं कल हुए मुकाबले में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रांस के वैलेंटीन रॉयर को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। सुनते हैं इस मुकाबले का हाल।
4: फ्रेंच ओपन चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विंबलडन प्रतियोगिता के तीसरे दौर में जगह बना ली है। वहीं इटली के माटेओ बेरेटिने और मेजबान ब्रिटेन के युवा खिलाड़ी आर्थर फेरी ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर का टिकट हासिल किया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने 2:04 तक चले मुकाबले में फ्रांस के वैलेंटिन रॉयर को सीधे सेटों में 6-1, 6-3, 7-6 से हराया। ज्वेरेव ने शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया और पहले 2 सेट आसानी से अपने नाम कर लिए। तीसरे सेट में रॉयर ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन टाई ब्रेक में ज्वेरेव ने बेहतर खेल दिखाया और मैच अपने नाम कर लिया। मेजबान ब्रिटेन के 23 वर्षीय आर्थर फेरी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने फिनलैंड के ओटो वेटानेन को 5-7, 7-6, 6-3, 6-3 से हराया। पहले सेट में हारने के बाद फेरी ने शानदार वापसी की और लगातार 3 सेट जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। वे वर्ष 2000 के बाद विंबलडन मेंस सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंचने वाले केवल 4th ब्रिटिश वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी बन गए हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।

0: अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच कल शाम 7 बजे मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर टिकी हुई है।
1: युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी को स्क्वाड में शामिल किए जाने के बाद से ही उनके डेब्यू पर सभी की निगाहें हैं। घरेलू क्रिकेट श्रृंखलाओं, विश्व कप और आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद वैभव को टीम में शामिल किया गया। आयरलैंड सीरीज में मिली हार के बाद वैभव को अंतिम 11 में लिए जाने पर अटकलें तेज हो गई थी, लेकिन इंग्लैंड के साथ पहले मुकाबले में भी वैभव को खेलने का मौका नहीं मिला। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे मुकाबले में युवा स्टार को डेब्यू का मौका मिलता है या नहीं। उधर बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारत को विश्व कप जिताने वाले संजू सैमसन पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। विश्व कप के बाद से सैमसन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में भी सैमसन महज एक ही रन बना सके। आयरलैंड श्रृंखला में सैमसन कुल 5 ही रन बना सके थे। वहीं दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने पिछले 3 मैचों में से 2 में 49 और 59 रन बनाकर अपना स्थान पुख्ता किया। सैमसन के अलावा तिलक वर्मा को भी मध्य क्रम में तेज खेलना होगा। इस साल 12 T20 में तिलक सिर्फ 12 छक्के ही लगा सके। दूसरी ओर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक, फिल सॉल्ट और टॉम बेंटोन जैसे बल्लेबाज श्रृंखला में अपनी दावेदारी पेश कर इस मुकाबले को जीतना चाहें। स्पोर्ट्स कैन के लिए मुनीश शर्मा।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भी 2 फाइनलिस्ट टीम का ऐलान हो गया है। उधर इंग्लैंड ने महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। कैनिंगटन ओवल में टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हराया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: इंग्लैंड ने 5वीं बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। एमी जोन्स महज 2 रन बनाकर शबनम इस्माइल की गेंद पर आउट हुई। वहीं डेनी व्याट को 12 रनों के स्कोर पर मारिजाने कैप ने पवेलियन भेजा। एलिसा कैप्सी भी महज 1 रन ही बना सकी। 23 के स्कोर पर 3 विकेट खोकर मुश्किल में नजर आ रही इंग्लैंड की लड़खड़ाती हुई पारी को कप्तान नेट साइवर ब्रंट और हीथर नाइट ने संभाला। दोनों ने मिलकर 4थे विकेट के लिए 90 गेंद में 133 रन जोड़े। नाइट ने 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 58 रन बनाए। वहीं साइवर ब्रंट ने 75 रनों की दमदार पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 11 चौके और 1 छक्का जड़ा, जिसके दम पर इंग्लैंड 5 विकेट खोकर 169 रन बनाने में सफल रही। गेंदबाजी में दक्षिण अफ्रीका की ओर से शबनम इस्माइल ने और नॉन कुलुलेको मलाबा ने 2-2 विकेट निकाले। इंग्लैंड ने 5वीं बार T20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। इंग्लैंड से मिले 170 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 129 रन ही बना सकी। टीम की कप्तान लॉरा वोलवार्ट और ताजमिन ब्रिट्स ने सधी हुई शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 43 रन जोड़े। वोलवार्ट 15 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हुई। हालांकि इसके बाद प्रोटियाज टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए। एनेरी डक्सेन ने महज 3 रन बनाए। वहीं टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में नजर आई मारिजाने कैप भी सेमीफाइनल में बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और सिर्फ 5 रन बनाकर चार्ली डीन का शिकार बनी। सुने लोस 11 रन ही बना सके, जबकि क्लो ट्रायोन को 12 रन के स्कोर पर सोफी एक्लेस्टोन ने क्लीन बोल्ड किया। ब्रिट्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंद में 51 रन की दमदार पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका। नादिन डी क्लर्क ने 14 और अयाबोंगा खाका ने 4 रन बनाए। गेंदबाजी में इंग्लैंड की ओर से लॉरेन बेल ने 28 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि चार्ली डीन ने भी 2 विकेट अपने नाम किए। खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड का सामना 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से रविवार को लॉर्ड्स के मैदान पर होगा। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: मुकाबले के दौरान इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन ने नया कीर्तिमान बनाया। उन्होंने महिला विश्व कप में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर को पछाड़कर सबसे ज्यादा 38 विकेट अपने नाम किए। बात निशानेबाजी पर, ISSF शॉटगन विश्व कप कल से इटली के लोनाटो में शुरू होगा। भारतीय निशानेबाज पिछले 2 विश्व कप के प्रदर्शन को भुलाकर इस वर्ष प्रतियोगिता में मजबूती से वापसी करना चाहेंगे। सुनते हैं किन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजर।
3: भारतीय निशानेबाजों ने लगातार राइफल और पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। अपने इसी प्रदर्शन को निशानेबाज इस विश्व कप में भी दोहराना चाहेंगे। भारतीय निशानेबाजों के लिए ये विश्व कप और इसके बाद इसी महीने चीन के हांगझोऊ में होने वाला ISSF विश्व कप

0: एशियाई खेलों से पहले अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के दो बड़े मौके होंगे। भारतीय टीम को अपने विदेशी कोच ब्रिटेन के ओलंपिक डबल ट्रैप चैंपियन पीटर विल्सन के मार्गदर्शन में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। भारत की ओर से किनान चेनाई, अहवर रिजवी और शपथ भारद्वाज पुरुष ट्रैप स्पर्धा में उतरेंगे। घरेलू ट्रायल और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद ये तिकड़ी इस सत्र के दोनों विश्व कप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव छोड़ने में असफल रही। पुरुष स्की स्पर्धा में भी निशानेबाजों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीदें होंगी। महिला वर्ग में भी भारतीय टीम का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। ट्रैप स्पर्धा में नीरू, मनीषा कीर और आशिमा अहलावत तथा स्कीट में परिनाज ढालीवाल, ओलंपियन रायजा ढिल्लों और महेश्वरी चौहान इस सत्र के विश्व कप मुकाबलों में कोई सफलता हासिल नहीं कर सकी। महिला ट्रैप में आशिमा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मोरक्को विश्व कप में 111 अंक के साथ 14वां स्थान रहा। नीरू अलमाटी विश्व कप के फाइनल तक पहुंची, लेकिन फाइनल में 7वें स्थान पर रहीं। वहीं मनीषा 112 अंकों के साथ 26वें स्थान पर रहीं। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात शतरंज पर। क्रोएशिया में विश्व चैंपियन डी गुकेश ने अपने सफेद मोहरों का शानदार उपयोग करते हुए दिन के अंतिम गेम में नीदरलैंड के ग्रैंड मास्टर अनिश गिरी को मात दी। सुनते हैं करिश्मा की ये रिपोर्ट।
2: ईरान के ग्रैंड मास्टर अलीरेजा फिरोजा ने अपने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 12 में से 10 अंक हासिल करके अपनी बढ़त 3 अंक तक पहुंचा दी है। जर्मनी के विंसेंट कीमर, फ्रांस के मैक्सिमम वाचियर लाग्रेव, रोमानिया के डियग बोगदान, डेनियल और गुकेश के समान 7 अंक हैं और वो संयुक्त दूसरे स्थान पर हैं। भारत के आर प्रज्ञान नंदा, गिरी और उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दू सत्तोरोव उनसे आधा अंक पीछे हैं, जबकि क्रोएशिया के इवान सारिक और नीदरलैंड के जॉर्डन वैन फॉरेस्ट सिर्फ 2-2 अंकों के साथ तालिका में सबसे नीचे हैं। रूई लोपेज एक्सचेंज वेरिएशन में गिरी के खिलाफ मिले अवसरों का गुकेश ने भरपूर फायदा उठाया। प्रज्ञान नंदा के लिए दिन और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन उन्हें अलीरेजा के खिलाफ एक गलती भारी पड़ी और आखिर में वह हार गए। प्रज्ञान नंदा ने फॉरेस्ट के खिलाफ दिन का पहला गेम जीता था। दिन की शुरुआत में गुकेश ने बोगदान डेनियल के खिलाफ अप्रत्याशित हार के साथ शुरुआत की, लेकिन फिर शानदार वापसी करते हुए फॉरेस्ट पर जीत हासिल की। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात बैडमिंटन पर। तानिया हेमनाथ और आकर्षि कश्यप की कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स वर्ग के दूसरे दौर में हार के साथ ही प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई। तीसरी वरीयता प्राप्त जापान की रिको गुंजी ने तानिया हेमनाथ को सीधे गेम में 21-11, 21-11 से हराया। वहीं आकर्षि ने चौथी वरीयता प्राप्त अमरीका की बेवेन झांग को कड़ी टक्कर दी, लेकिन 1 घंटे 7 मिनट तक चले मुकाबले में उन्हें 20-22, 21-17, 21-17 से हार का सामना करना पड़ा। उधर बास्केटबॉल में अहमदाबाद फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 एशियन क्वालिफायर की मेजबानी कर रहा है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहे।

0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधार कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में

0: राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
1: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य

0: देश तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग

0: हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए 2 संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ଶୁଣୁଥିଲି ଗୀତ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ରମରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗାୟନ ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ସିଆରାମ ତିୱାରୀ। ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଥମେ ପରିବେଷଣ କଲେ କଳାବତୀ ରାଗରେ ଧମାର ଏବଂ ପରେ ପରେ ମିଶ୍ର ଖମାଜ ରାଗରେ ଗୟା ଠୁମରି। ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ପଖାବଜରେ ସଙ୍ଗତ କରୁଥିଲେ ପନ୍ନାଲାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ହାରମୋନିୟମରେ ମୋହନ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ସାରଙ୍ଗୀରେ ଦୟାରାମ ମିଶ୍ର। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା। ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀରେ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେକୁଡ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
3: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
4: Prime Minister will also be visiting.
5: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को

0: द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहाँ संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।